0: आंटी आप कहानी सुनाओगी?
1: जरूर सुनाऊंगी। इधर आओ, बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
0: तोते और बंदर की।
1: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।